मेरे मालिक रहमत कर ते मैनू उन्हां दे चरणां दी धूड़ प्राप्त होवे। जो दिसे गो सिखड़ा तिस निम निम लागो पाए जियो। आखा बिरथा जी की गुरसज्जन से मिलाए जी। तू जिथे मिलिया मेनू भी मिला, जिथे तेरी सांझ बनी उथे मेरी भी सांझ बना दी। मैं अपने मन की अवस्था उन्हां कोल आखा जेड़े तुरे हुए ने पहुंचे हुए ने इस मार्ग ते जिन्हां ने चार कदम तय किए हुए मंजिला मारदे तुरे जा रहे ने जे। ओ जेड़े मंजिला मारदे जा रहे ने साहब कहंदे ने अखाउंदे ही नहीं केवल की करते ने उद्यम करे भलके प्रभाती अमृत वेले। प्रभात का मतलब है सूरज चढ़न तो बहुत पहला डान ते मारन च फर्क है। जिसने सूरज चढ़ता है उसनू डान कह दे, लेकिन सवेरा इस तो पहला, सवेरा का मतलब होंदा है चंगा वेला सवेला। सूरज चढ़न तो बाद जिहड़ा बंदा भगती दी गल सोचदा है ना वह कवेला कर बैंदा। सवेरा जिन्हां ने सामना है वह अमृत वेले। सूरज चढ़न तो बहुत पहला पहला अपना काम नबेड़दे ते जिहड़े इस मार्ग ते तुरे होए ना। भाई साहब तां बड़ी खूबसूरत गल कही। भाई साहब कहिंदे ने ऐसे लोग जिहड़े गुरु मार्ग ते अमृत वेले तुरदे ने मेरा तां जी करदा है उन्हां दे चरणां दी खाक हो जा। नख सिख लो नख पैरां दा नहु, नख शिख सिर दी चोटी, नख शिख लो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखण के चरण पैवाई। कट कट के मेरा शरीर सिखां दे चरणां तों निछावर कर दे, वारने कर दे। कहिंदे ने अग्न जलाए हुण पीसण पिसाए तेह, चक्की च पी दे अग च भुन दे। लै उठे पौन होए अनेक प्रकारिये, तरह तरह नाल हवा विच उड़ा दे। उस हवा विच मेरे शरीर दी खाक उड़ जावे। जिथे कहिंदे ने जत कत सिख पग धरे गुरपंथ प्रात। सवेरे सवेरे जिहड़े जिहड़े रस्तियां तों गुरु के सिख गुरु चरणां वल तुर के आउंदे ने, जिहड़े जिहड़े रस्तियां तों गुरु के सिखां दे चरण, गुरु के सिखां दे पैर गुरु चरणा वाल गुरु द्वारे वाल वधे ने, ताहू ताहू मार्ग मैं पसम तो डारीए। मेरे शरीर की पसम जिहड़ी उन्हां उन्हां रस्तियां ते फैला दे, उन्हां उन्हां रस्तियां ते विछा दिओ मेरे शरीर नूं सुआह करके पसम करके। तेह पद पादक चरण लिव लागी रहे, उन्हां रस्तियां ते पैदल चलण वालिआं दे चरणा नाल मेरा प्यार बनिया रहे, मेरी लिव लगी रहे। दया के दयाल मोए पदक उधारीए, ताकि उन्हां दे चरणा दी खाक प्राप्त करके, मेरे शरीर दी खाक उन्हां दे चरणा दी छोह प्राप्त करके मैं पापी पार उतर जा, मेरा पापी दा उधार हो जा। कैसी प्यारी जीवन जाच है, उद्यम करे पलके प्रभाती अमृत वेले उठे। उद्यम करे आलसी ना रह जावे, क्योंकि आलसी दा निरा रोगी है, किसे पासे भी कामयाब नहीं हो सकता। गुरसिख जीवन दे हर मैदान विच सफलता नूं प्राप्त करने वास्ते उद्यम करदा। और महाराज पावन बाणी च सुचेत कराया, उद्यम करेंदिया जीओ तू, कमांदिया सुख पुंज, ध्याएंदिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। उद्यम करके जी, उद्यम करके कमाई भी कर, ध्यान करके भगती करके प्रभु दे नाल सांझ भी पर पा लै, इधर भी मिलाप कर लै। इस तरह तेरा जीवन एक चैन वाला सुख वाला निश्चिंती वाला हो जाए। इशनान करे अमृत सर नहावे, शरीर करके भी शुद्ध हो। जिथे बाणी दा अमृत वसदा हो उस सत्संगत दे अमृत सरोवर में आके मन नूं भी डुबिया लवा। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, गुरु का उपदेश सरवण करे उसके अनुसार ही उतर गए। वाहेगुरु नाम सिमरन करे, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। अमृत छकने ना पंजा प्यारिया, वो जिसले कहिंदे ने गुरसिखा आज तो तेरा जन्म गुरु नानक दे घर विच होया, कलगीधर पातशाह दे घर विच होया, तेरा पिता गुरु कलगीधर, तेरी माता साहिब कौर, तेरा जन्म केसगढ़ साहिब दा ते वासी तू आनंदपुर साहिब दा। रही चल भावे जिथे तेरा दिल करदा, किस नगर च रहो तेरी सांझ आनंदपुर वाले नाल बनी हो, बल्कि तेरा हिरदा उस आनंद दे
नगर दा वासी होवे जिसनू किया गया बेगम पुरा शहर को नाओ तू खांदो नहीं ते ठाओ तेरी मानसिक अवस्था आनंद वाली हो तू उस दे उस आनंद वाली नगरी दा भी वासी होवे जिथे भगतां दा वासा हुंदा संतां दा वासा हो उस आत्मक अवस्था दी उच्चता नू तू प्राप्त हो उथे राले भी कहंदे गुरमुख तेरे ते आज तो ए पाबंदी आयद होगी ये गल समझ लेना जेड़ा बंदा पाबंदियां अंदर नहीं जींदा वो आप उतरा डिसिप्लिन नू ना धारण करना घरां दा डिसिप्लिन है स्कूलां कालजां दा डिसिप्लिन है फौजां दा डिसिप्लिन है बाजारां कारोबारां दा भी अपनी किस्म दा एक डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन तो बाहर जाओ कानून आग्या नहीं देता धर्म दे संबंध च ऐसा लोगों ने समझ लिया जो मर्जी करो ऐसी गल नहीं चले गुर सतगुर का जो सिख आखाए वो सिखी दे डिसिप्लिन च चले गुर सिखी दे जो नेम ने और वो नेम तुहानू पता है सारियां नू पता है पंज प्यारे हुक्म देणगे अज तो तू पंजां ककारां दा रह धर नहीं होना इन्हां पंजां ककारां दी हद तो बाहर नहीं जाना इस डिसिप्लिन तो बाहर नहीं जाना और चार बजर कुरैतां दी उस लकीर तो भी बाहर नहीं जाना चार बजर कुरैतां तो बच के रहना है पंजे रहतां नू पूरी तरह धारण करना ना केवल बल्कि ईमानदारी नाल धर्म की किरत करके कमाउणा है गुरु दसवंद देना है परोपकार हित जूझदे रहना है अपने अंदरों उठते विकारां नाल जूझदे रहना है वो जिहड़ी तुक आपां पढ़ने रहत नाम है खालसा सोए जो चढ़े तुरंग खालसा सोए करे नित जंग बंदा सोचता है कि वह समा सी जिसले घोड़िया ते चढ़ के गुरु के सिख जंग करते सन ते महाराज के लिखाए हुए रहतनामे दा त्रैकाल ने हुण जे घोड़े नहीं ते जंग नहीं ते फिर दा मतलब है सिख की करे जे नहीं करदा घोड़े ते नहीं चढ़दा जंग नहीं करदा ते फिर सिख तां बेकार हो गया सिख सिख ना रहा ऐसी गल नहीं है वह जंग बाहरली है बुराई नाल जंग है लेकिन बुराई तां अंदर भी चलदी पई जिसले बंदा इधरों बाहरों वेला होवे साहिब कलगीधर पातशाह कोल सिखा ने सवाल किया महाराज हुण तां कोई लड़ाई झगड़ा जंग कोई नहीं रह गया की करिए अजकल की करिया करिए साहब कह लगे युद्ध जारी रखो हैरान हो गए कह लगे महाराज हुण आपस च लड़िए युद्ध किहदे नाल जारी रखिए लड़न वाला दुश्मन ही कोई नहीं सारे भगौड़े हो गए छड गए भज गए हुण किहदे नाल लड़िए युद्ध जारी रखिए कैसा युद्ध वैसे महाराज ने यह भी रोजाना के नितनेम शामिल किया रेजाबाजियां करो तलवारबाजियां करो शरीर की कसरत भी करो शस्त्र धारनी होके शस्त्र की विद्या प्रवीण होने का जतन भी जारी रखो लेकिन इथे जिसने महाराज ने कहा युद्ध जारी रखो महाराज किहदे नाल लड़िए धन जियो तेह को जग मैं मुख ते हर चित मैं युद्ध विचारे बाहरला युद्ध भी चित दा युद्ध भी वो केड़ा युद्ध है महाराज कहन लगे अंदर तुहाडे ते थोड़ियां धारां पैंदियां ने कदे काम हमला करदा है कदे क्रोध कदे लोभ मोह हंकार इन्हां नाल अंदरों ज्ञान है की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार मुहारे ज्ञान दा शस्त्र लैके अंदर दी बुराई नूं वढ़दे चले जाओ अंदर दी भी सफाई जारी रखो युद्ध अंदर भी चल सकदा खालसा सोए जो चढ़े तुरंग जो मन दे घोड़े ते सवारी करे मन नूं काबू च रखे डिसिप्लिन च रखे सिक्खी दे डिसिप्लिन च रखे मन नूं शरीर दा डिसिप्लिन है कि रहतां दा धारनी हो रहतां तो बचिया हो मन का डिसिप्लिन यह है कि काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे काबू ना इस घोड़े नू लगाम पा के बाणी अनुसार खालसा सोए करे नित जंग बुराइयां नाल अंदर भी बुराइयां नाल जंग करे बाहर भी जंग करे साहब कहंदे ने ऐसा गुरु का सिख उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किन लिख पाप दोख लह जावे जिसने गुरु के बचना अनुसार एक डिसिप्लिन च जीवन बतीत करेगा ना पाप धोते जाने दोष खत्म हो जाने दोख कहंदे ने दोष नूं दोष खत्म हो जाने जीवन चो बुराइयां निकल जाएगी जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर स्वास अंदर आवे स्वास बाहर जावे एदे नाल वाहगुरु सिमरन जुड़िया हो आम तौर ते ऐसा ही करदे ने स्वास अंदर जावे ते वाह कहंदे स्वास बाहर जावे ते गुरु कहंदे सहज अवस्था विच इस तरह जपदे फिरदे चले जांदे ने कई कदम कदम जपदे ने कई कारोबार करदिया होए कोई भी हरकत कोई ताल मिल जावे उस दे नाल वाहगुरु सिमरन दा जतन करदे ने लेकिन कई बार ऐसा भी हुंदा है सहज अवस्था विच सिमरन करदिया करदिया मन दी स्थिरता प्राप्त नहीं होंदी मन टिकदा नहीं ओदे वास्ते कई बार मन नाल जूझना भी पैंदा ओदे विच ऐसा भी कीता गया गुरमुख गुरसिख जोर ला के भी सिमरन करदे ने साह दी चाल तेज कर देंदे
ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਹਿ ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਣ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਨੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਸਦਕਾਮ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਦੇਵੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵੇ ਦੁਰਮਤ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਲਵੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਤਿਨ ਹੋਮੇ ਕੁਬਦਾ ਪੰਨੀ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇ ਕੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾਹੀ ਵਿਚਾਰ ਡਿੱਠਾ ਹਰ ਜਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵੰਗਣ ਮੰਨੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਖੇੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਦੇ ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜੈ ਸਭ ਕੀਤਾ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਹੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ

तब कत मूंड लुकई है। हुण तेरा सोहना मुख है, सोहनी रसना कुदरत ने दिती है नाम जपन वास्ते, ते जे कदे तू पशु दी जून पै गया ते फेर पाई।

सकत कहे। अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहिजै, कोट इंद्र इंद्राण साहो सहान गणिजै। त्रिपौन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत, तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम बरनत। सुमत पुजंग पर्यात छंद नमस्ते।

ते मैनू निवाजे, मैनू मान बख्शेगा। मैं तेरे दर ते आके तेरे अगे पुकार करदा हां कि कृपा कर मैनू अपने

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर

अजय सरों में पीख्या खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन विछड़ गए।

जिनके स्वामी रहते हजूर, रोवे जन्मे जख गया एक ही कारण पापी पया, रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मतलब।

पता नहीं सी कि इस तरह परमेश्वर दा सदा आ जाएगा। साहब जी कहते ने इंसान हर काम महूरत देख के करता है। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे या कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी दा काम होवे, ता इंसान सारिया तो पहला दिन देखदा, तारीख देखदा, महीना देखदा, साल देखदा, महूरत देखदा। ए काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारिया नू बुला लवा, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू हर काम महूरत ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरण लगिया तू कोई महूरत ना देखिया, कोई तारीख ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा, सारिया नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान हर काम तू महूरत दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ए महूरत नहीं देखन देंदी। मरण ना मूरत पुछया, पुछी थितना वार, मौत ने ना दिन देखन देता, ना तरीक देखन देती, ना कोई महीना देखन देता। बस इन्ना ही पता लगा चंगा भला सारे परिवार नूं मिलके घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस, घरों ते तुर पिया। परिवार नूं मिलके बड़ा खुश है, पर की पता सी कि जांदिया जांदिया रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाणा। घर वाले घर उड़ीकदे पए ने, आ जाणगे शाम नूं, मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया

बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया ता छोड़ चलिया। एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पे, ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा, कि आखरी वेले किसे नु मिली लवां। नहीं, परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नु मिलन दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढ है, आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नू रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

अराज मिल जोबन ग्रैसो बा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार शोभा सोना रूप सारा कुछ छड के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार घोड़े लाल लाख बयानी हाथी घोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड के जो बड़े चाह नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

बंके कहंदे ने पति नूं, जिन्हां दे पति मर गए, जिन्हां वापस नहीं आना। उन्हां औरतां दे बारे साहिब जी कहंदे ने, तिन क्यों रहण विहाणी, उन्हां दीआं रातां हुण किवें बीतन, क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे, रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण, पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहिब जी बाणी विच बयान करदे ने, ओह पत्नी किवें जीवन बितावे जिहदा पति इक वारी गया ते मुड़ के वापस नहीं आया।

विछोड़ा किस दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहंदे ने ए भी सच है मरना जरूर है ए भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर दा सिमरन करो दुनिया नु नाशवान समझो ताकि इस दुख नु तुसी सह सको ए समझ सको।

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावां, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। ते इंसान लड़ाइयां जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है। ये भी कहता है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव पबाड़े। मुख कहंदे ने मोह नूं, मोह तूं इह भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवां उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवां उन्हों छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल दी सलाह करके सौंदा है,

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाबी विच करते हो तो आप धंधा जो हो जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच दोस्तां विच घर दे नौकरां चाकरां नाल तां इह समा उहनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, उह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असि तो उस ताते का सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हाँ। जे कुछ ऊंटाई है तो ध्यान दियो ते पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तो सिखी का मुढ़ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी का धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तो कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असि तो अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हाँ। जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश होया तो मुगल राज का समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण अनुभव किया ते बाणी विच फरमाया, घर घर मिया सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नु हलूना सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छा दिया मर्यादा अपना के घर घर मिया बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगो दाते दा अपना काम है, आप ही सहाय होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

मेरा रूप बिगड़िया होया भयानक है। मुबारक है जो बंदे नूं अपने आप कोलों डर लगन लग पवे ना, ओ समा मनुख दे बदल जाण वास्ते बड़ा मुबारक है। मनुख दे चंगे बनन दे दिन आए समझो। जिस दिन बंदे नूं अपने अंदर फैले हुए औगण नजर आ जाण, धन गुरु नानक ने उन्हां औगणां ते सट नजर पवाई। कहिंदे मैं वेखदा, भाव धन गुरु नानक दे इस शब्द द्वारा असी वेखना है अपने अंदर, ते देखना है सारा कुछ, बहुत कुछ नजर आ जाएगा। जे सारा कुछ नहीं ते बहुता कुछ नजर आ जाएगा। एक स्वान दो स्वानी नाल, एक ता मेरे अंदर कुत्ता भौंक रहा है, उदे नाल दो कुत्तियां भौंक रही हैं। लोभ कुत्ता, आशा ते तृष्णा उदे नाल रलियां हुई कुत्तियां। हर अमृत वेले हर दिन चढ़ते पलक पलक लफ्ज जेड़ा है, एदा अगर आप बिल्कुल सही लफ्ज अर्थ वास्ते लभिए, अंग्रेजी चापा तू मारो कह सकने। अगला चढ़दा दिन, हर अमृत वेला हर चढ़दा दिन, जिस वेले मैं भगती दे मार्ग ते तुरना चाहना, मेरे राह विच भौंक भौंक के मैनू ए परेशान कर दे लोभ तृष्णा ते आशा। इन्हां दे भौंकण दे नाल मेरे अंदर हलचल पैदा हो जाती, पलके भौंके सदा बयाल, बड़िया भयानक आवाजा कढ़ दे। कूड़ छुरा मुठा मुरदार, पुराने समयां च कुछ लोग जंगली कबीलियां चो ऐसे भी हुंदे सन, जेड़े ना ता लिबास चंगा रखदे सन, ना उन्हां दे खान पहनन पीन दी मर्यादा सी कोई, ना उन्हां दे डेरियां ते कोई समाजिक मर्यादा ही सी। जो मिल गया मार लिया खा लिया, जिन्हू वेखिया लुट लिया। आम तौर ते साडे लोग सासियां नूं भी ऐसा करके जानदे रहे ने, हालांकि सासी कौम कुछ होर सी। ए राजपूतां दे ओह लोग सन जेड़े साहस करके हिम्मत करके बागी हो तुरे सन, पर क्योंकि थां थां फिरदियां होया, इन्हां लोकां ने भी चज नाल कोई टिकाणा ना बनाया, इन्हां दी मर्यादा भी खान पीण पहनण दी कोई चंगी ना रही। ते आम तौर ते समाज विच इन्हां नूं भी उसे निगाह नाल वेख्या जाण लग पिया, जिहड़े असभ्य लोग सभ्यता रहित सभ्यताहीन लोग साडे समाज च पसरे होए सन, जिहड़े किसे समाज नूं किसे इंसानियत दे कानून नूं मनण नूं तैयार नहीं, गलत खान पीण गलत काम करन वाले, ते फिर लोकां नूं लुट्टण मारन जो कुछ मिल जाए आम तौर ते बिले न्योले जो कुछ मिल गया सब खा लेंदे सन। हुण ओह छुरा भी रखदे सन, तीर भी रखदे सन, हथियार रखदे सन, हालांकि वीरता दीआं निशानियां, शस्त्र कोल होना बहादरी दा निशान है, लेकिन उन्हां वास्ते जिन्हां परपकार वास्ते वरतना होवे, जिवें तुहानू महाराज ने बख्शे। ते जिहड़ा पराए बुरे वास्ते किसे दा नुकसान करके किसे नूं तड़फा के जो स्वाद लैण वास्ते हथियार वरते जाण, ते फिर बड़े भयानक हो जाते। महाराज कहिंदे ने मेरे अंदर कूड दा छुरा मैं लक नाल बने, हराम खाना, क्योंकि महाराज ने पावन बाणी च बड़ा स्पष्ट किया है, हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। मुसलमाना वास्ते जिस तरह सूर हराम है, हिंदुआ वास्ते जिस तरह गां दा मास हराम है, इसे तरह किसे दे हक ते निगाह रखनी, किसे दा हक मार के खाना, जिवें इन्हां दोहां कौमां वास्ते इन्हां दो चीजां नूं हराम मनिया गया है, इसे तरह इंसान वास्ते पराया हक हराम है। ते महाराज अग्गे भी कहिंदे ने, गुर पीर हामा तां भरै जां मुरदार ना खाए। जे इह हराम दा मुरदार बंदा नहीं खांदा ता गुरु पीर भी बाह फड़दा, ते जे बंदा कवे मैं गुरु का भी बनिया रहा, गुरु दी सांझ ही बनी रहे, ते मैं हक हलाल दी बजाए लोकां दा मार मार के खांदा रहा, ता गुरु वालों हामी भरे जाण दी कोई गुंजाइश नहीं। महाराज कहिंदे ने इस तरीके दे नाल मेरे अंदर हक पराए दी निगाह जिहड़ी है ओ एक मुरदार खाण वाली गंदी बिरती, इस तरह मैं बड़ा मारखोरा भयानक रूप लैके फिर रहा। मैं पत की पंध, मैनू अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं,
ना करनी की कार मेरे अंदर आचरण की रहनी दी कोई लकीर नहीं कोई हद नहीं। तेरा एक नाम तारे संसार एक आसरा है कि इस भयानकता तो अपने आप तो लगते डर वाली अवस्था तो इस संसार तो तेरा नाम मैनु बचा सकता। ऐसे आसरे मैं एहा आस एहो आधार आस ला के बैठा एक नाम दे आसरे शायद मेरा जीवन बदल जा। मुख निंदा आखा दिन रात मैं लोकां दे औगण कढ़ के ये सच करके जानना जिन्ना चिर बंदा दूजियां दे औगण कढ़दा रहे अपने औगणा ते निगाह ही नहीं पई ते जिन्ना चिर अपने औगणा ते निगाह ना पवे बंदा ठीक किवें होवे। धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह दे पावन दरबार च आप जानदे हो साहिबां दे पास बहुत वड्डा चिकित्सालय सी दवाखाना सी लगभग उस वेले पसरिया मोटिया मोटिया सब बीमारियां दा इलाज महाराज सच्चे पातशाह दी निगरानी हेठ होया करदा सी। बड़े बड़े तकड़े सियाने हकीम वैद महाराज ने सेवा च लाए हुए सन ते हर तरह की जड़ी बूटी दवाई जो उस वेले मिल सकण वाली चीज सी वरती जा सकण वाली चीज सी महाराज ने अपने दवाखाने कच कीती सी। इथों तक भी दस्या गया है कि एक बार दिल्ली दरबार विच भी एक बहुत वड्डे आकार की हरण की लोड़ पै गई सी हकीमां ने कह दिता ते महाराज के दवाखाने बिना होर किधरों नहीं सी मिली। वो एक प्रेमी का मंजा चुक के लियाए घर दे बंदे लिया के वह मंजा रखिया वो कहिंदा मैनू महाराज को लै चलो मरीज जो है रोगी कहिंदा मैनू महाराज के बूहे ते लै चलो। वह कहन लगे तेनू दवाखाने विच हकीमां ते वैदां दे हवाले करना है महाराज के दर्शन तू तगड़ा होके कर लई महाराज इत्थे भी आउंदे ने दर्शन बख्शदे ने सतगुरु पातशाह उन्हां रोगियां नू आके नाम जपन निरंकार नाल जुड़न दा उपदेश भी नाल नाल देंदे रहिंदे सी दवा दारू भी चलदा रहे कहिंदा नहीं मैनू हुणे लै चलो महाराज एक बारी मैनू वेख लै। सियाणियां ने बहुत किया तेनू वैदां ने वेखना हकीमां ने वेखना महाराज दे दर्शन करने ने नहीं महाराज मैनू वेखण जिद कर बैठा रोगी की जिद बड़ी हुंदी उन्हें क्या चलो कोई नहीं लै चलो मंजा चुके महाराज के बूहे ते लै आए। दरबार ने कहा सतगुरु आराम फरमा रहे ने विश्राम कर रहे ने हालांकि सतगुरु ने कहा विश्राम करना उन्हें विश्राम विच भी भगती ते समाधि है उन्हें इकले हो जाने विच भी समाधि है जपन है सिमरन है पर उपकार की भावना से कुछ व्यवंता हो पर नहीं उसने क्या विश्राम कर रहे ने कह लगा मैनू इथे प्यार रहन दो जिस वेले वो बाहर निकल गए मैनू एक बार वेख लैन फिर मेरा दुआ दारू शुरू करे आवाज अंदर भी पहुंच गई। महाराज ने पूछा क्यों भाई की गल है दरबार ने दसिया महाराज रोगी आया वो कहिंदा पहला महाराज मैनू वेखण फिर मेरा इलाज शुरू करो। महाराज पातशाह आप बाहर आ गए धन गुरु हर राय साहब बाहर आ गए जिस वेले साहिबां दे दर्शन होए वो जिहड़ा पासा नहीं सी लै सकदा ना पिया पिया सज्जा खब्बा पासा नहीं सी मोड़ सकदा सारा शरीर गलिया पे सी वैदा हकीमां ने जिसके बारे जवाब दे दिता होया सी महाराज नू वेखदिया सार छेती नाल उठण दा जतन करन लगा साथियां ने क्या प्यार हो महाराज ने भी इशारा कीता मगर उठ के बैठ गया मंजे ते उठ के थले उतरन लगा महाराज कहन लगे टिक जा की चाहुणा है ये कहिंदा बस महाराज मैं ही चाहुंदा सां तुसीं मैनू वेख लो। साहिबां ने मुस्कुरा के ओही गल कही भलिया लोका तेनू वेखण के वैद हकीम दवाई देणगे तू ठीक हो जाएगा आ गए ते हुण तेनू ठीक करके तोरांगे साडे वेखण वाली केड़ी गल है सिर नीवा करके कहन लगा महाराज ओ मैनू बाहरों वेखणगे मलमा ला के ठीक करके तोर देणगे मेरे अंदर किन्ना कोड वरतिया जिहड़ा फुट के बाहर आ गया तां तुहानू ही दिसना वैदा हकीमां नू कोई नहीं दिसना किस काम क्रोध ते गंध ने मेरे अंदरों मैनू रोगी कीता ते ओ रोग मेरे बाहर चमड़ी ते आ गए ने ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰੋਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਤ ਕੀ ਪੰਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ ਹੋ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਬਿਕਰਾਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ
तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार मुख निंदा आखां दिन रात इस मूह नाल मैं लोकां दी निंदिया करदियां जिंदगी बिता रहा दिन रात लोकां दियां बुराइयां कढ़ियां पर घर जो ही नीच सनात मैं बड़ा नीच ते कमीना हां कि मैं लोकां दे घरां विच वेखना ध्यान देना लोकां दे घरां वल वेखना आम तौर ते बाणी विच इस सेंस च लिया गया है इस भाव च लिया गया है जेड़ा कोई स्त्री किसी दे मर्द वाल वेखे या कोई मर्द किसी दी स्त्री वाल वेखे लेकिन केवल शरीरां तक दी गल नहीं है एक कामी पुरुष अपने घर वाल ना वेखदा होया किसी दी इज्जत वाल वेखदा है बहुत माड़ी गल एक स्त्री अपने पति दी धर्म पत्नी ना रह के ईमानदार ना रह के किसी मर्द वाल मैली निगाह नाल वेखे इस नूं पर घर जोना कहिंदे ने पराए घर वाल वेखना लेकिन साडे लोकां दी निगाह इत्थे ही थोड़ा टिकी असी धन भी लोकां दे घरां दा वेखने वडियाईयां भी लोकां दे घरां दीआं वेखने जो कुछ किसे दे घर च नजर आउंदा है उत्थे ही साडी लोभ दी निगाह टिकी हर चीज ते साडी निगाह मैली हुंदी चली जांदी साहिब कहिंदे ने इस तरह मेरी निगाह लोकां दे घरां विच पै रही पर घर जो ही देखदा हां लोकां दे घरां विच वेखदा हां बड़ा नीच ते कमीना बणै काम क्रोध तन वसै चंडाल ये तुसी भी जानते हो कि आम तौर ते बंदा कातल ते खूनी उदो बनता है जदों ए लोभ दे वस होवे काम दे वस होवे क्रोध दे वस होवे ए खराबियां बंदे कोलों बहुत गुणा कराउंदियां हैं साहिब कहिंदे ने इन्हां चंडालां ने मेरे कोलों बड़ा नुकसान कराया अपना भी पराया भी इन्हां चंडालां ने मैनूं नेक इंसान नहीं बनन दिता नहीं रहन दिता तानक रूप रहा करतार ਹਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਫਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਧਾ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਾਹੀ ਸੁਰਤ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਫਸਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਚ ਲੈ ਸਕਾਂ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਹੈ ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ ਮੈਂ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਮਗਰ ਠੱਗੀ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਰਤ ਕਣ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਘਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬਲਕਿ ਤੈਥੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹਾਂ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਲ ਰਹੀ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ

सारा सब सदका है। सदका का सारा उत्साह है जिसके सदके अज ये रूहानी चेहरा, अज ये सरदारियां, अज असी गुरु अर्जन देव पातशाह का जन्मदिन मना रहे हैं। सो किन्नी कृपा ए गुरसिखां उत्ते होई। अज उस पासे वल झाती मारीए अब पता लगता है जे ओ विश्वास रखण वाले अज गुस्से होके ना चले जांदे ते अज सोहणियां दाड़ियां वाले सरदार गुरबाणी ना गायन कर सकते। पर वाहिगुरु ने ये दातां बख्शणियां सी, ये उहदी बख्शिश है जिसकी बख्शिश द्वारा असी कीर्तना विच दीवाना विच जाके जे कोई गायन नहीं कर सकता तो सुनता तो है ना, कावते उड़े छुट्टे भी उतरे पिंड से पास करे।

मथे लगने वास्ते तेरे चरणा ते पहुंच सदके गुरु गोविंद सिंह तेरा ही करना शुक्र है जे गुरु के प्यारे गुरु के सिख दीदार मथे करने वास्ते जान ते फिर इस मन ना जान इस ख्याल ना जान के धन सो दे इस जहां तू वसिया मेरे सजन मीत पूरा है मेरे सजन ते मीत मित्र घनेरे करत की मेरा पुकार दे धन सो मीत धन सो दे मेरे सज्जन ते मीत।

साहिब गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, जिथे सारिया भगतां नूं सन्माने उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करदे ने, कहंदे ने हे प्रभु ए संसार एक समुंदर है, ते समुंदर विच कहंदे ने जदों देवतियां ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढे, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पानी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहंदे ने हे मालिक

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते

अपने पिता दी गोद विचों बड़ी बेरहमी नाल बड़ी बेदर्दी नाल बाहर खिंच लिया। निमाणा जिहा होके पुछदा हे मां मैनू इक गल दा पता नहीं लगा भाई तू राणी है के गोली है।

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यो करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

ते मैनू नवाजेगा, मैनू मान बख्शेगा। मैं तेरे दर ते आके तेरे अगे पुकार करदा हां कि कृपा कर मैनू अपना,

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समरथ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर

चरण यही महत्व में अवतारी उजागिर यान कियो, तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन।

मेरे हृदय विचों विसर्जन जाए। जदों तू मेरे हृदय विचों विसरदा है उस वेले मेरी आत्मक मौत हो जाती। तू विसरे ता सब को लग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारे हावी हो जाते हैं उदों जदों तेरी याद विसर जाती है मेरे हृदय विचों। इस वास्ते मेरी अरदास है पातशाह तू मेरे चित विचों कदे ना विसर, हर वेले मेरे अंतस्करण विच वसदा रहे। सतनाम श्री वाहिगुरु। असां कलयुगी जीवां दे उद्धार हित अपने निज स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणां विच गुरु अर्जन देव पातशाह